0: She said, "Indeed, kings, when they enter a city, they ruin it and render the honored of its people humbled, and thus do they do."
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
1: डेजर्ट सफारी
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
4: ياسين.
0: ياسين.
4: والقرآن الحكيم.
0: By the wise Quran.
4: إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Indeed you, O Muhammad, are from among the messengers.
4: عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
0: On a straight path.
4: تنزيل العزيز الرحيم.
0: This is a revelation of the exalted in might, the merciful.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीट हासिल कीजिए.
1: This is Laika Radio.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208890880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: किसी की नजर
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक
2: London, get ready for an unforgettable night.
3: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
6: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
7: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
8: Must be won.
9: Must be won.
10: Must be won.
11: Must be won.
7: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
12: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
13: Punjab, the biggest tunes. No.

0: हबीबी के नैन निकले फरेबी, वो मोहब्बत फरेब होती है, वो मोहब्बत फरेब होती है जो रकीबों के दरमियान न खुले। जुमेरात की ठंडी सी सुबह और बैक टू बैक दो नहीं बल्कि तीन गाने प्रोग्राम के वार्म अप टाइम में एक बार फिर से थर्सडे मॉर्निंग।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: ये है
2: Like a Radio.
1: क्योंकि सांस भी कभी.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer.
4: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
3: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: London, get ready for an unforgettable night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
8: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
9: The wait is finally over.
10: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
9: Mirzapur is coming to the big screen.
11: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
9: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
12: Abe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
9: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
13: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
14: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
15: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे. और जिसने अपने गुरु की माँ बाप की दुआ दे ली उसको आगे जाने से रोक. बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाता है.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Punjabi hit of the hour.

0: ताबिश की गरम प्याय की चाली,
1: गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो।
0: जी हाँ जी, ये हैं अन्नू मलिक और पीछे हैं सलमान खान।
1: हो या काली हो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: सीने से लगाने वाली हो।
0: कहते हैं कि हमें तो हर उस शख्स से दुनिया में इजाफा ही रहा।
2: Like a radio.
0: हम तो हर शख्स की दुनिया में इजाफी ही रहे। पता नहीं लोग किसी के लाडले कैसे हो जाते हैं। जुमेरात मुबारक। वही जुमेरात जो बुध के बाद और जुमे से पहले आती है और ताबिश के लिए खुशी का पैगाम लाती है कि कल लास्ट इस हफ्ते का शो होगा, जुमा होगा कल। और ये दो दिन बड़े अहम होते हैं और कोशिश होती है कि इन दोनों दिनों में आपको भरपूर

0: वनाई के साथ भरपूर तफरीह फराहम की जाए, बेहतरीन आपको म्यूजिक सुनवाया जाए, अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर की जाएं, ताकि आपका मूड अपलोड हो जाए। रब जलील के बाबर का नाम से अपने शो अपनी बज़्म की इब्तिदा करते हैं, जो मेरे और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। घर पे हैं, काम पे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सितंबर महीने की आज 10 तारीख हो गई साहब, सन 2026 का नवा महीना, सितंबर का महीना, दिल वालों का महीना, दिल तोड़ने वालों का महीना। वैसे ही कहा है मैंने, इसमें कोई दिल पे लेने की बात नहीं है। आज का रिडल आपसे पूछेंगे और हमारी डायरी के पन्ने पे दो बहुत अहम नाम लिखे हैं। एक नाम हमारे लिस्नर हैं खालिद लंगड़ियाल भाई, आज उनकी बर्थडे है, और एक नाम लिखा है पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस सुपर स्टार 80s-70s के जमाने की अदाकारा जेबा, हमारी जेबा भाभी। उनके गीत प्रोग्राम में पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग की सूरत में जो है हम आपके लिए पेश करेंगे, और सारे गीत आप ही की पसंद के होंगे, ये वादा रहा आपसे। शेर व शायरी होगी आपके साथ, टिकटॉक रहेगा आपके साथ, चिटचैट रहेगी आपके साथ व्हाट्सएप पर। और आज का रिडल ये है कि जी वो कौन सा फल है जिसे फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI वालों का पैगाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ऑनलाइन या फिर इनकी किसी ब्रांच में जाएं या इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, यूनो एसबीआई मोबाइल ऐप यूके के जरिए आज के रेट 127.90 रुपए।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। दिस इज लाइका रेडियो। ग्रेटर मैनचेस्टर।
0: राइट जनाब, खालिद लंगड़ियाल भाई कितने वर्ष की हो गए यार? कहते हैं कि लड़कों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। देख लीजिए हमें कैसे पता था कि आज आपकी बर्थडे है। मेरी जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से खालिद भाई आपको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो, और ये आपकी पसंद का गीत आपके नाम हुआ।
2: Uno, dos, tres, cuatro.
0: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का गीत आपकी पसंद, आप ही के नाम।

0: रेडियो।
1: जी हाँ जी, ये थी मलिका तरन्नुम नूरजहां, और इस सॉन्ग को प्ले करने का कारण ये था कि ये फिल्माया गया था अदकारा जेबा, जेबा अली, हमारी जेबा भाभी। आज उनकी बर्थडे है साहब। हमारी डायरी के पन्ने पे लिखा है 10 सितंबर 1945। ओफो, कितनी बड़ी हो गई है ना, मुझसे भी बड़ी, आपसे भी बड़ी। तो अदकारा जेबा पे फिल्माए गए पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग को हम यकीनन पेश करेंगे आपकी पसंद के। और ताहिर सिद्दीक भाई ने हमारी बात की नफी कर दी, हमने कहा था कि आज सारे गीत आप ही की पसंद के होंगे, कहते हैं मैं नहीं मानता। लोग किस कदर जानते हैं मुझे। राजा अतीफ भाई ने लिख के भेजा कि ताबिश भाई वो शख्स अब नहीं है यहाँ, वो शख्स अब नहीं है यहाँ, अब बड़े जो दर्द तो उसे पुकार लेते हो। अच्छा, हम तो यहाँ चाय की बात कर रहे थे, एक गरम चाय की प्याली हो। वो मेरे साथ बहुत से मेरे साथी हैं जो मेरे साथ चाय पी रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वो क्या खूब किसी ने कहा था चाय के मुतालिक कि आ जाओ चाय पीते हैं, आ जाओ चाय पीते हैं, क्योंकि खुशियां तो वैसे भी लोग खा गए हैं।
0: Greater Manchester, Bradford, Leeds, we are getting bigger. Like a radio.
1: प्रोग्राम के पहले इससे का लास्ट ब्रेक।

0: कुछ लोग खामोखा हंसते हैं,
1: हंस मत बदले,
0: कुछ लोग मुस्कुराते हैं और कुछ लोग कहे लगाते हैं।
2: मत बदले, प्यार हो जाए।
0: आपका शुमार किन लोगों में होता है?
3: Like a radio.
0: गुलाम अली भाई लिखते हैं कि उनकी एक मुस्कुराहट पर हम होश गवा बैठे, उनकी एक मुस्कुराहट पर हम होश गवा बैठे और हम होश में आने लगे तो वो फिर मुस्कुरा बैठे। अरे वाह। और तबस्सुम आपने हमें लिख के भेजा कि अब तेरे साथ रहूं या किनारा कर लूं, अब तेरे साथ रहूं या किनारा कर लूं, ए दिल जरा ठहर, ए दिल जरा ठहर, इस्तिहारा कर लूं। अरे वाह वाह वाह। और इस्तिहारा ये कहता है कि किनारा कर लूं, इस्तिहारा ये कहता है कि किनारा कर लूं, और ये दिल कहता है कि इस्तिहारा दोबारा कर लूं। बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा तबस्सुम, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे आज के प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा हाथ रहेगा, खास तौर पे फरीद भाई आपका। फरजाना बहन आपने भी हमें दो गाने लिख के भेजे हैं ज़ेबा बेगम के, और बहुत उम्दा और प्यारी सी शायरी हमें भेजेंगी चंदा, और साथ में कुछ दिल जले शेर भेजे हैं आसिम ने, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अबरार भाई वालेकुम अस्सलाम, अय्यूबी भाई ने ज्वाइन किया और सबको सलाम कहा है। अय्यूबी भाई को मैडम नूरजहां का सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था, अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा। हाँ जी, आज जिक्र रहेगा अय्यूबी भाई। इमरान राणा आपको शुक्रिया। शाहीन हमारे साथ हैं चीरल में, अहमद हैं गैटली में, हमजा हमारे साथ हैं मैनचेस्टर में, और एक नाम और था।
3: ये है
4: Like a Radio.
5: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
6: This part of the show is brought to you by ये रिश्ता क्या कहलाता है? Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
11: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
10: डेजर्ट सफारी,
11: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
10: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
11: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
12: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
13: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
14: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
13: Available at ethnic grocery store near you. गणपति बाप्पा मोरिया.
1: आप पंजाबी आ गए।
3: Diljit Dosanjh non-stop on Laika Radio Punjabi. Listen now on the Laika Radio mobile app at laikaradio.com and on Alexa. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मैं अकेला अपनी धुन में मगन जिंदगी का मजा लिए जा रहा था कि तुम मिल गए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का दूसरा क्लासिक सॉन्ग आपको कैसा लगा?
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: US dollar 1.35, 1.35. Indian rupees mein 128.93 paise. Pakistani rupees mein 376.53 paise. Bangladeshi taka 167.55 paise. Sri Lankan rupees 444.67 paise. Aur Afghani rupees 88.42 paise.
2: Like her.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKER Radio. This is LIKER Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio.
2: LIKER Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKER Radio.
0: हाँ जी, सुने का भाव एक बार फिर से आपको बता दूं, हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 105 पाउंड 13 पेंस, 105 पाउंड 13 पेनिया, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट आज हो गया 38,900 रूपए, 38,900 रूपीज।
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: LIKER Radio.
1: LIKER Radio.

कभी कभार कंप्यूटर भी इंसान के साथ धोखेबाजी करता है। लाइव वीडियो जनाब मर्सिडीज बेंज वालों के लिए, आपको बता दें बड़ा उम्दा पैगाम है मर्सिडीज। ये पैगाम मर्सिडीज बेंज वेंस की जानिब से लाइक रेडियो नेटवर्क के तावुन से पेश किया जा रहा है। जब आप अपना कारोबार करते हैं तो आपकी वैन आपके आने जाने का जरिया नहीं रहती, ये आपकी रोजी रोटी और साग बन जाती है। इसीलिए मर्सिडीज बेंज वैन्स ने अपने अप टाइम प्रॉमिस कायम किया है, एक साइट कायम की है जिसको कहते हैं अप टाइम प्रॉमिस, और यानी कारोबारी फायदों का एक मुकम्मल मजमुआ, जैसे सड़क पर 2400 घंटे सातों दिन आपकी मदद, वर्कशॉप देर तक खुली रहना, गाड़ी पर हर लम्हा मॉनिटरिंग करना, यानी हर वो चीज जिसकी आपको अपनी वैन के डाउन टाइम को कंट्रोल करने और कारोबार चलाने के लिए जरूरत पड़े। मर्सिडीज बेंज आपकी जरूरत समझता है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन्स सर्च करें और उनके बिला तातुल अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। टर्म्स कंडीशंस लागू होंगी और मर्सिडीज वैन्स का अप टाइम प्रॉमिस गाड़ी के मुताबिक और मर्सिडीज बेंज के मिजाज मरम्मत कारों से सर्विसिंग से मशरूत होगा। हाँ जी, यानी टर्म्स कंडीशंस लागू होंगी। अभी रابطے में आइए mbvans.co.uk, अप टाइम प्रॉमिस पे जाके फौरी तौर पे मजीद मालूमात हासिल कीजिए।

0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: हाँ जी, लाइक एड एक्स्ट्रा की जो है अब पॉडकास्ट अपडेट आपको एक बार फिर से बता दें, हमारे सोशल मीडिया के तमाम जो जगह हैं उन पे आप जाइए और खासतौर पे हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 32 को जरूर देखिए, क्योंकि एक वकील हैं, मोहम्मद वकील स्पेशलिस्ट हैं, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं रवि शर्मा, और ये इंस्पायर हैं जगजीत सिंह से और जावेद अख्तर से, और बड़ी मजे मजे की बातें इन्होंने इस एपिसोड में की हैं। जरूर देखिएगा इस एपिसोड को प्लीज।
0: लाइक है एक्स्ट्रा, ये है
2: लाइक आवर रेडियो।
0: रेडी क्रिकेट फैंस, द T20 बैटल इज ऑन। टीम इंडिया टेक्स ऑन अफगानिस्तान इन 3 एक्सप्लोसिव T20 इंटरनेशनल्स फ्रॉम 13th टू 17th सितंबर। बिग सिक्सेस, फ्लाइंग स्टंप्स एंड एज ऑफ द सीट एक्शन लाइव फ्रॉम 2:30 PM एक्सक्लूसिवली ऑन जियो हॉटस्टार UK। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब नाउ।
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner Leica Radio.
8: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
9: Must be won.
10: Must be won.
11: Must be won.
12: Must be won.
8: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. Greater Manchester, Bradford, Leeds. We are getting bigger. Leica Radio. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite.

0: जिंदगी संवार दी बाय नाहिद अख्तर। फिल्म का नाम शमा, 1974, जेबा भाभी। और इस गीत को हम नाम करेंगे अतीका जी आपके। आज हमारी डायरी के पन्ने पे अदाकारा जेबा अली का नाम लिखा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India. जी हाँ जी, SBI वालों का पैगाम, ऑनलाइन या फिर इनकी किसी ब्रांच में जाएं और अपने प्यारों को इंडिया में रकम पहुंचाएं। आज का रेट है 127.90 रुपए इंडियन रुपीज में।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester. Leica Radio.
0: Leica Radio Greater Manchester. जुमेरात की सुबह, आधी सुबह गुजर चुकी, अब तो बिड मॉर्निंग टाइम है। जुमेरात की सुबह के 11 बजकर हो गए हमारे यहाँ 40 मिनट। पाकिस्तान में दोपहर के 3 बजकर 40 मिनट, भारत में 3 बजकर हो गए तकरीबन 4 बजकर 10 मिनट, माफी चाहता हूँ। और न्यूयॉर्क में रोबिन भाई के यहाँ सुबह के 7 बजने में 20 मिनट है अभी, यानी 6 बजकर वहां 40 मिनट हो गए। अदाकारा जेबा भाभी हमारी, मैं भाभी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन एहतराम है।

उनसे मुलाकात हो चुकी है और अली भाई उनसे भी मुलाकात रही है, तो एक ऐसा ताल्लुक होता है कभी कभार कि वो ताल्लुकात, वो लम्हा, वो मुलाकात फिर आप भुला नहीं सकते। तो बहरहाल अहमद हमारे साथ हैं गेटली में और एक्रिंटन से चले हैं चीमा साहब, मैनचेस्टर आ रहे हैं और बहुत इंजॉय किया इस गाने को। ये सॉन्ग बहुत सारे लोगों की पसंद है, जमशेद चौधरी भाई मुझे पता है आपकी भी पसंद है और गुलाम अली भाई भी कहते हैं बहुत ज़बरदस्त ताबिश भाई, इस गीत की नकल हमारे इंडिया में भी हुई है। हाँ, अच्छी चीज़ों की ही नकल होती है साहब। और TNA टीम हमारे साथ है और पूरी टीम हमें सुन रही है। शिराज भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जोर जोर से गाड़ी चलाते हुए गा रहे थे इस गाने को। और डम में हमारे साथ अब्बास भाई, सिर्फ अब्बास और जाहिद अब्बास और खुशबू और जाहिदा सुमरो, जरीन हमारे साथ हैं आज टन में, सीमा हमारे साथ हैं आज टन में और काशिफ भाई, थैंक यू वेरी मच, गजाला जबी, रुखसाना अफजल, अदनान बरी में, अमन हमारे साथ हैं, लेला और वहां पे होती हैं चंदा। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज का मधुर गीत आपको लेके जाएगा अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की लास्ट कमर्शियल की जाने। ये सॉन्ग उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को कुछ लोग बहुत याद आते हैं और वो सिर्फ याद आते हैं, वो लौट के वापस नहीं आते, उनके नाम ये गीत होगा।

0: जी तुम याद ना आया करो और याद आने से पहले आ जाया करो। क्या प्यारा शब्द है, गाने का अंतरा कितना प्यारा है। फिल्म का नाम है जीने नहीं दूंगा।
1: दिल के अंदर बाहर एक दर्द सा उठता है।
0: दिल के अंदर बाहर एक ऐसा दर्द उठता है कि जिस दर्द की दुनिया में कोई दवा नहीं मिलती। कहते हैं कुछ यादें आंखों में इसलिए भी नमी लाती हैं, कुछ यादें आंखों में नमी इसलिए भी लाती हैं कि हम उन्हें दोबारा जी नहीं सकते।
2: ये है
3: Like a Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: The wait is finally over.
6: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
5: Mirzapur is coming to the big screen.
7: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
5: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
8: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
5: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
7: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11, 11.
10: Call the Danu Properties London office today on 02 03 963

0: Radio.
1: कहते हैं कि कभी यादें, कभी बातें, कभी पिछली मुलाकातें, कभी यादें, कभी बातें, कभी पिछली मुलाकातें, बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ याद आता है तेरे एक याद आने से। और कहते हैं कि अब अपनी यादों से हमें रिहाई दे, अब अपनी यादों से हमें रिहाई दे, हमें हर जगह न दिखाई दे। बहुत तुम आसिम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमारे रिडल के जवाब आ रहे हैं, बड़ी शिद्दत से आ रहे हैं। इतने सारे फलों के नाम लिख के भेज दिए हमें जरीन ने कि सोचा कोई ना कोई तो इनमें से होगा। यानी कितनी चीटिंग है, ये लड़कियां कितनी चलाक होती हैं, होती नहीं है, समझती अपने आप को। रॉबिन भाई का चाय का कप आ गया भाई। लिखते हैं कि अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ताविश भाई एंड योर लवली लिसनर। थैंक यू रॉबिन भाई, खुशामदीद। सुबह के 7 बजने में 10 मिनट नहीं 7 मिनट बाकी न्यूयॉर्क में, और हमारे यहाँ दोपहर के 12 बजने में 6 मिनट बाकी।
0: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: यादों का जिक्र हो और फिर यादों के गीत न याद आए, ऐसा कैसे हो सकता है। याद रखिएगा, मैं वापस 12 बजे की खबरों के बाद आऊंगा और मजीद एक घंटा अगला आने वाला किसी को जाने नहीं दूंगा।

0: हाँ तेरी याद,
1: तेरी जब याद बहुत आती,
0: न जाने क्यों ये यादें आपस में क्यों नहीं बिछड़ती
1: है। तेरी जब याद
0: मुलाकातें नहीं मुमकिन, मुझे एहसास है लेकिन मुलाकातें नहीं मुमकिन, मुझे एहसास है लेकिन तुम्हें दिल याद करता है, बस तुम इतना याद रखना। लीजिए जनाब, बिलाखिर प्रोग्राम के हम तीसरे हिस्से में दाखिल हो ही गए। यादों पे बात चली है तो बहुत से गीत हमारे सिस्टम में होते हैं, जब हम कोई गीत तलाश करते हैं और कोई एक शब्द लिखते हैं उस सॉन्ग को फाइंड आउट करने के लिए, तो फिर बहुत सारे सॉन्ग उससे रिलेटेड आ जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, हमारे पास यूट्यूब नहीं होता, हमारी अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लें, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कल जुमा है और कल 11 तारीख है और कल आतिफ असलम जो है लाइव कॉन्सर्ट करने आ रहे हैं मैनचेस्टर में। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत से लोग फिक्रमंद हैं, कल भी मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए थे और आज भी पूछा है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो मेरे विनर थे मेरे प्रोग्राम में, मेरे शो में, और मेरे बहुत से साथी प्रेजेंटर्स के प्रोग्राम में भी, उनके शो में आपने विन किया था कॉन्सर्ट के लिए पेयर टिकट, तो आप यकीनन फिक्रमंद होंगे। बहुत से लोगों को शायद टिकट मिल गए हैं ईमेल के ज़रिए, और बहुत से लोगों को शायद आता नहीं है, वो अपनी ईमेल पे इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि सिलसिला ये है। मैं आपको बताऊं, गौर से सुन लें, दोबारा आपको बता देता हूं, काम की बात है कि आपने ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल को, देखें और मोबाइल में देखें, उस पर ऐप स्टोर पर जाएँ और वहाँ पर जाके आप डाउनलोड करें टिकट मास्टर। यस, टिकट मास्टर को आप जब कर लेंगे डाउनलोड उनकी ऐप को, तो फिर उसमें जाके आप अपनी ईमेल को चेक कीजिए, आपकी ईमेल एड्रेस आपके नाम से वहां लिखी होगी, तो फिर उसमें आप अपनी ईमेल एड्रेस को खोलें, वहां जाने के बाद तो आपको आपका टिकट मिल जाएगा। याद रखिएगा, टिकट मास्टर, अपनी ऐप्स स्टोर पे जाइए, वहां जाके उसे डाउनलोड कीजिए और फिर वहां जाके अपनी ईमेल को तलाश कीजिए। गुड आफ्टरनून जुमेरात की दोपहर,
2: ये है लाइका रेडियो। This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
6: Greater Manchester, Bradford, Leeds. We are getting bigger. Leica Radio.
0: और जी हाँ, हमारी बहन साबरा ने आज सुबह ही सुबह हमसे फरमाइश की थी कि ताबिश भाई, आज भी आप प्लीज जगजीत सिंह की गजल लगाइएगा। जगजीत सिंह के अंदाज को, उनकी गजलों को भला कौन पसंद नहीं करता।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, janab, ye kya ho gaya? Pehle currency ke rate sun le. US डॉलर 1.35 इंडियन रुपीज में 128.93 रुपए, पाकिस्तानी रुपीज में 376.53 रुपए, बांग्लादेशी टका 167.55 रुपए, श्रीलंकन रुपीज 444.67 रुपए और अफगानी रुपीज 88.42 रुपए.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits.
1: हाँ, तो मैं कह रहा था कि जगजीत सिंह की ये गजल मेरे तमाम नए पुराने लिस्नर जो हैं उन सबको पता है कि मरहूम मेरे दोस्त मॉस सीनियर प्रेजेंटर जाहिर जफर भाई, जो अब हम में नहीं रहे, उनकी यादों में इस गजल का खास हिस्सा है, क्योंकि वो अपने अक्सर प्रोग्राम में ये गजल कभी मेरे नाम किया करते थे और कभी मैं उनके नाम इस गजल को किया करता था. तो ये सिलसिले और ये यादें हैं, चूंकि बात यादों पे चली है आज. कहते हैं कि मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हो जिनसे, खफा हो जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं, और मचलते रहते हैं जहनों में वसवसों की तरह, मचलते रहते हैं जहनों में वसवसों की तरह, हसीन लोग भी आए हाय हाय, हसीन लोग भी जान का वबाल होते हैं. भाई वाह तीखा जी, आज आपने भी धमाल डाल ही दिया. असल में ऐसा होता है कि मैसेजेस कभी कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं, और मैं बहुत काम की चीज़ें होती हैं जो कुछ दोस्त मुझे भेजते हैं रोजाना, और काम की चीज़ों को तो फिर शामिल करना ही पड़ता है आपको. बहरहाल जी, नहीं मिल रही मुझे वो काम की चीज, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं.
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: राइट जनाब, साउथल वालों का पैगाम, दुबई के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं आपकी तो बेहतर होगा, और नहीं तो फिर कर लीजिए. बहुत अच्छी डील्स दे रहे हैं दुबई जाने के सिलसिले में साउथल वाले, और कहते हैं कि अटोल प्रोटेक्टेड है. नंबर इनका है 020-8574-8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: हाँ जी, सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई 105 pounds 13 pence, और पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का आज रेट हो गया 38,900 rupees.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. LIKA Radio.
1: प्रोग्राम के थर्ड एंड फाइनल अवर में लाइव रीड आपको बता दूं कि सुनील ग्रोवर, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, OVO एरिना में आएंगे पहले वेम्बली में ऑन थर्सडे 29 अक्टूबर को, और उसके बाद मिट्योली अरीना सैटरडे को 31 अक्टूबर को आएंगे ये लेस्टर में. टिकट के लिए AXS पे जाइए, इवन ब्राइट या फिर टिकट मास्टर से, क्योंकि ये हमारे लाइक रेडियो के मीडिया पार्टनर है. इसके अलावा आपको बता दें कि कविता कृष्णमूर्ति आ रही हैं और आतिफ असलम आ रहे हैं कल. हाँ,
2: ये है LIKA Radio.
3: LIKA Radio.
4: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.

0: जी हाँ, ये हमारे इस हफ्ते के आर्टिस्ट ऑफ द वीक राहत फतेह अली खान साहब। और इस गीत का हम नाम करेंगे, पहली मर्तबा हमें आज मैसेज किया है उमर हयात मलिक साहब ने। रोज सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं, खामोश लिसनर हैं, लेकिन आज खामोशी तोड़ी। बहुत शुक्रिया उमर हयात साहब।
1: Leica Radio launches in Leeds and Bradford. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी के योनो SBI वालों का पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या फिर इनकी ब्रांच में जाएं। आज के रेट दे रहे हैं ये ब्रिटिश पाउंड के बदले में 127.90 रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
0: कहते हैं कि कभी देखा है अंधे को किसी का हाथ पकड़कर चलते। यकीनन ये राहेला जी होंगी। लिखती हैं कि कभी देखा है अंधे को किसी का हाथ पकड़कर चलते। मैंने मोहब्बत में यूं तुझ पे भरोसा किया था। ओह माय गॉड। कहते हैं कि अब नहीं रखते हम किसी से शौक उल्फत। बेरहम से लोग हैं ये दिल तोड़ देते हैं। आगे आप लिखती हैं कि हमने तो हर हाल में लोगों का दिल रखा है। अब कोई पागल भी बनाए तो बन जाते हैं।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: Right, जनाब, कहाँ गए?

0: हाय हाय हाय हाय, इस बात से कहीं तू ये ना समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। वाह वाह, रॉबिन भाई कमाल कर दिया आपने। आपने कहा था एक नाम भूल गए ताबिश भाई आप, वो नाम था रुखसाना अफजल। जी हाँ, ये सॉन्ग था, रॉबिन भाई ने हमें न्यूयॉर्क से फरमाइश की थी और अपने तमाम रफीकों और दोस्तों के नाम करने को कहा था।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles. Like a radio.
0: Right, जनाब, अब जाते जाते बैक टू बैक दो गाने होंगे। आपसे रुख्सत होने का वक्त आ गया। हमने आज आपसे जो रिडल पूछा था, आज की पहेली, कि वो कौन सा फ्रूट है, वो कौन सा फल है कि जिसे आप फ्रिज में रख दें तो वो जहर बन जाता है। तो खूब तहकीक की हमारे बहुत सारे अच्छे साथियों ने, जिसमें खासतौर पे ताबीर शामिल हैं, कजूरी जी बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत डीप में जाके जो है जवाब देती हैं, गजाला जबी हमारी बहन, आपने भी बहुत दुरुस्त जवाब दिया था, और रॉबिन भाई की तो क्या बात है, अमेरिका के रहने वाले लोग हैं भाई। एक्चुअली कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप बिल्कुल प्योर जो है, यानी असली जहर जो है, वो नहीं बन सकता किसी भी चीज से। हाँ, ये कि मजे का खैज हो जाती हैं चीजें, और जिसमें ये है कि बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बहुत से फल हैं, अगर आप केला रखते हैं तो वो काला हो जाता है, और कोई भी ऐसा फ्रूट जिसे आप काटने के बाद, खोलने के बाद ओपन कर लें तो यकीनन उसमें बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, और जहर से मुराद ये होती है कि उसे खाने के बाद जाहिर है कि आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन सर फेरिस जो नाम आया वो आया था जी तरबूज का। जी हाँ, वाटरमेलन, बड़ा वाला तरबूज, जो कि मैं बहुत खाता हूँ गर्मियों में, और अक्सर हमारी बहनें ये गलती करती हैं कि वो जो बच जाता है उसे फ्रिज में रख देती हैं, तो वो ना रखा करें प्लीज। वो तकरीबन पॉइजन ही है, वो फिर आपका पेट खराब कर देगा, बस ये होता है। तो तमाम साथियों का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये रिडल का जवाब दिया। डॉक्टर अल्ताफ अलवी, बहुत लेट आए आप। हमारे चार विनर थे जी आतिफ असलम के, जिसमें नाम शामिल था अबरार हुसैन, नईम मलिक, अतीक राजा, सफिया एजाज, जिसमें से अबरार भाई आपने अभी मैसेज किया कि मुझे तो मिल गया। ठीक है जी, अब जाते जाते दो गाने हैं, इसमें से कौन सा गाना आपको पसंद है और कौन सा गाना आपको पसंद है?

0: The Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: The bomb sunne walon ko warm welcome hai. Assalamu alaikum. Namaste. Sat Sri Akal. Have a very good afternoon. Kaisa halukum? Ki hal chal hai? बस इतना ही है. सो एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन कर रहे हैं. आप द लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर मैगजीन शो सुनना शुरू किया है और अभी ज्वाइन किया है या पहले से हमारे साथ हैं, आप सबको वार्म वेलकम है. प्रोग्राम में दो गीत हमने बैक टू बैक सुनवाए, जालिमा अरिजीत सिंह एंड हर्षदीप कौर की आवाजों में. रईस फिल्म से, 2017 की फिल्म से इस गीत का लिया. कभी कभी आई मीन कोई गीत अच्छा लगता है तो उसको प्ले करना बहुत अच्छा लगता है. सो जालिम आपके लिए प्ले किया. और सेकंड सॉन्ग वाज फ्रॉम द फिल्म थ्री इडियट्स, 2009 की फिल्म थी, जो आज भी देखें तो आपको बड़ा मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं. और गाने भी क्या, बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने आपके लिए प्ले किया आज 10th of September afternoon. उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, एंजॉय करेंगे हमारे साथ इन गीतों को, कुछ बातों को. 1:30 पर एक छोटा सा ब्रीफ सा इंटरव्यू है, उसको भी जरूर सुनिएगा एट 1:30. और यू नॉर्मल एंड यूजुअल हमारे सारे फॉर्मर के साथ जम पैक प्रोग्राम होगा. ये है आपका अपना द मैगजीन शो.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is sponsored by O Hamnava Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar. One performer.
4: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
3: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: No, sorry, mate.
6: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
7: We can get it in, but it might be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410. दैट्स 0208574 8410.
9: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
10: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
13: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
14: Aap Punjabi aa gaya.
3: Diljit Dosanjh non-stop on Laika Radio Punjabi. Listen now on the Laika Radio mobile app at laikaradio.com and on Alexa.
14: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
15: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए tarikhalal.com।

0: तारिक हलाल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com.
1: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So, currency exchange rate, आपको बता दें, US dollar आपको 1 pound के exchange में मिलेंगे 1.35. Indian rupees, you will get 128.93 Indian rupees. Pakistani rupees, 376.53. Bangladeshi takers, 167.55. Sri Lankan rupees, 444.67. Afghani, 88.42. Afghanis.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
0: Formerly known as Asian Sound Radio.
1: और जी हाँ, लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर की आवाज आप तक पहुंच रही है। द मैगजीन शो आप सुन रहे हैं। मेरे साथ आज एक बहुत ही स्वीट गेस्ट है जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन जब बातचीत होगी तभी आप जानेंगे कि ये कौन है, क्या करती हैं और आज यहाँ पर हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो इनका क्या एम है, क्या मकसद है, ये हमें क्या बताना चाहती हैं। सो फाइंड आउट करेंगे इन अ सेकंड।
0: द मैगजीन शो विद रुबीना खान।
1: जी, आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ स्टूडियोज में जो गेस्ट हैं उसका, उनके काम के पीछे बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिएगा, दिस सैटरडे इन मैनचेस्टर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स ऑफ सेविंग लाइव्स, बट द फैक्ट इट इज स्टिल नीड्स टू एग्जिस्ट टेल्स इट्स ओन स्टोरी। सो मेरे पास तीन नाम हैं, सुमा बेगम है, परमजीत कौर है, शफीला अहमद है, एंड जस्ट थ्री नेम्स, थ्री ब्रिटिश Asian women murdered by their own families, their crime saying no to forced marriages or daring to leave abusive partner. So ye sirf chand naam nahi hai, there are thousands of black Asian akliti women jo khauf mein zindagi guzar rahi hain. For 50 years one place in Manchester has been their lifeline, Saheli. Joining me now is the woman who leads that work, Saheli's CEO, Priya Chopra. Priya, thank you for joining us today. Hello, Priya.
3: Hello, everybody, and hello, Rubina. Thank you for inviting me to the show.
1: Bahut shukriya, aap aayi. Aur this interview is going to be Urdu and English both. So, mera pehla question ye hoga ki for listeners who don't know Saheli, what sort of cases do you deal with every single day? What do you think? What type of cases you deal with?
3: So, Saheli एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एशियन ब्लैक और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है जो डोमेस्टिक अब्यूज एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे घरेलू झगड़ा या मारपीट होती है। हमें तकरीबन 10 सालों में 35,000 कॉल आई हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी समस्या है हमारी कम्युनिटी के अंदर। और बड़ी हमारी कम्युनिटी मानती नहीं है या बिलीव नहीं करती है कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक अब्यूज होती है या फोर्स्ड मैरिज के इश्यूज होते हैं। बहुत सारी औरतों को पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में छोड़ दिया जाता है बच्चों के साथ, उनका पासपोर्ट और उनके कागज वगैरह ले लिए जाते हैं। तो फिर ये औरतें वहां से हमें कॉन्टेक्ट करती हैं, हम ब्रिटिश एम्बेसी के साथ और एयरपोर्ट के साथ काम करते हैं इन फैमिलीज को, इन लड़कियों को वापस लाने के लिए। हमारे काम में हम ग्रुप वर्क करते हैं, बहुत बुजुर्ग औरतें भी हैं जो 60+ हैं, जो अकेली हैं और उनका कोई भी नहीं है, और बहुत तरफा बच्चे दूर रहते हैं और घरेलू जायदाद के लिए या बड़े सारे घरेलू झगड़ों की वजह से उस उम्र में भी औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ जाता है। और बहुत सारी औरतें और बच्चे घर छोड़ना नहीं चाहते, पर घर के हालात कभी ऐसे हो जाते हैं कि उनको
1: घर छोड़ना पड़ जाता है
3: और फिर उनको सोफा सर्फिंग करनी पड़ती है, उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं होती, रिश्तेदार के लिए बदनामी होती है, शर्म होती है, हर कोई औरत कोई ब्लेम करता है कि उसकी गलती है जो भी हो रहा है। इस हालात में औरतें बहुत मजबूर हो जाती हैं और उनका वो रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि उनकी एडवांटेज उठाई जा सकती है।
1: ठीक है प्रिया, सॉरी आई हैव टू जंप इन फॉर अ सेकंड, क्योंकि आई नो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है और सारी बहुत शेकिंग है कि जो आपने फिगर बताए हैं कि बहुत से लोगों के दिल हिल गए होंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोई औरत स्पेशली क्राइसिस में ही लोग आते हैं आपके पास, वेमेन स्पेशली, तो आप एक्चुअल प्रोवाइड क्या उनको प्रोवाइड करती हैं, क्या सपोर्ट आप देती हैं?
3: तो के पास तीन रेफ्यूजीज हैं और हमारी हेल्पलाइन है जिसपे आप फोन कर सकते हो. उसका नंबर है 0161945418 7. और हम लोग ग्रुप वर्क रन करते हैं, हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं औरतों को. कभी कभी औरतों को पास नो रिकोर्स होता है क्योंकि उनका वीजा नहीं सॉर्ट आउट हुआ. इन हालात में भी हम उनकी मदद करते हैं, उनको उनके लिए जगह का इंतजाम करते हैं. और कभी उनको ट्रैवल करके दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं.
1: ठीक है, तो एक्चुअल सपोर्ट आप उनको देती हैं जिससे उनका उस वक्त आर्जी तौर पर सही, लेकिन उनका गुजारा हो जाता है. अब जो है, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वन. व्हाई वी आर स्टिल सीइंग ऑनर बेस्ड अब्यूज एंड फोर्स्ड मैरिजेस इन 2026 विद आवर साउथ एशियन कम्युनिटीज हियर इन द यूके? दिस इज अ बिग क्वेश्चन प्रिया.
3: हाँ, बहुत होता है क्योंकि हमारी फैमिलीज चाहती हैं यू नो बच्चे अच्छे घर में सेटल हो जाएं, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो. कभी कभी बच्चे कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनका डिफरेंट रिलेशनशिप हो जाता है या कुछ हालात बदल जाते हैं. कभी पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते हैं कि हम अरेंज करते करते कभी दबाव भी डालना शुरू कर देते हैं, और ये चीज एक बहुत गलत अंजाम ले लेती है जब कभी बच्चे मानते नहीं है या समझते नहीं है, और हालात बहुत खराब हो जाते हैं. और हमारे ऑफिस में एक वॉल ऑफ डेडिकेशन है, वहां पे 25 ऐसी यंग लड़कियां हैं अंडर द एज ऑफ 25 जिनकी जान चली गई. एक डेथ ब्रैडफर्ड में होती है, एक बर्मिंगम में होती है, एक लंदन में होती है. हम रियलाइज नहीं करते कि ये कितनी सीरियस और कितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जो अभी तक इन इस 21st सेंचुरी में भी हम ये सब कुछ देख रहे हैं.
1: ट्रू,
3: यूके में
1: बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान सोच नहीं सकता. लेकिन एनीवे, आप ये बताइए कि रनिंग अ रेफ्यूज फॉर 50 इयर्स इज नॉट अ इजी थिंग. सो आपको क्या बिगेस्ट चैलेंजेस फील होते हैं या आप उनसे गुजरते हैं चैलेंजेस से?
3: सो हम अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. सहेली एक वन ऑफ द फर्स्ट रेफ्यूजेस था साउथ एशियन वुमेन के लिए जो 1976 में बना था. हम एक शो गाला कर रहे हैं इस सेलिब्रेशन को करने में, जिसमें बेव क्रेग और हमें क्वीन ने भी मैसेज भेजा है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि ये जर्नी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रही है और फंड रेजिंग हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है. बच्चों का हमारे वर्कर की फंडिंग चली गई है तो हमें लोगों से डोनेशन लेनी पड़ती है उनकी हेल्प करने के लिए. और औरतें बड़ी दफा आती हैं, वो घर से कभी कभी सूटकेस भी नहीं होता, वो ऐसे ही निकल आती हैं, ना उनके पास कपड़े होते हैं, ना उनके पास उनके पेपर होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर. हम उनका बेनिफिट नहीं अप्लाई कर, जब तक ये सारे कागजी कार्रवाई होती है हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनके लिए ट्रैवल मनी की जरूरत होती है अगर वो किसी और शहर में जा रही हैं. तो ये सब मसले हमारे लिए बहुत हो जाते हैं. फंडिंग 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फिर टेंडर के लिए अप्लाई करना पड़ता है. हम लोग ये जो गाला नाइट कर रहे हैं, हम आप चाहते हैं आप सब लोग इसको सपोर्ट करो. ये वर्मिलियन में 12 सितंबर को हो रही है और हम वहां पर बहुत सारे पॉलिटिशियन, 300 गेस्ट्स और सपोर्टर्स आ रहे हैं. आपका साथ भी हमें आपको जानकारी देगा हमारा काम कैसा है, ये 50 साल हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि औरतों के साथ कोई नहीं खड़ा रहता, अपनी उनकी खुद की फैमिली भी उनको मना कर देती है तो वो बहुत मजबूर हो जाती है. कितनी लड़कियां जिनकी रेप हो रही है, जिनको ट्रैफिकिंग करा गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से लाया गया है और उनकी डिमांड. वहां पर बहुत सारे अच्छे ख्वाब दिखाते हैं, यहाँ आकर हालात कुछ अलग ही होती है और इन लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है. सहेली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको सपोर्ट कर रही है, आप हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि डोमेस्टिक अब्यूज ऐसा सब्जेक्ट है हर कोई बोलना नहीं चाहता, पर ये बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी में ये सब कुछ हो रहा है और हमें इसे रोकना चाहिए अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए और अपनी माँ के लिए।
1: एक्सलेंट एक्सलेंट। प्रिया, जब आपने अभी ये कहा है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और अभी आपका ये जो गाला डिनर हो रहा है विविलियन मैनचेस्टर में, तो उसमें आपने कहा साथ दें, तो पीपल How can people contact
3: you? हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.saheli.org.uk। वहाँ पे आपको टिकट्स मिल जाएंगी। आज लास्ट डे है टिकट सेल का, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जरूर आप कोशिश कर रहे हैं हमारे डिनर को अटेंड करें। जो पैसे हम रेस कर रहे हैं वो हमारे चिल्ड्रन वर्कर के लिए और हमारे नए रेफ्यूज के लिए है, तो आपका साथ बहुत मीनिंगफुल है। पर ऑल्सो आप डोनेट कर सकते हैं, अगर आप आ नहीं सकते, सहेली वेबसाइट पे डोनेशन का पेज है, आप डोनेट करें। पर ऑल्सो उधर आपको हमारा फोन नंबर, अगर आपको हेल्प चाहिए, आप अगर कोई औरत हो जो इस बड़े मुश्किल दौर से अकेली गुजर रही हो, तो आप सहेली को फोन कर सकते हो, उनको ईमेल भेज सकते हो, हमको, हम आपकी मदद करें।
1: थैंक यू सो मच प्रिया।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग जुग जुग जियो।
1: और जब आपने किसी आर्टिस्ट को लाइव सुना हो, ये दोनों कविता सेठ एंड कौशिक सेठ, ये माँ बेटा की आवाज है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने अटेंड किया इनकी इनका कॉन्सर्ट। क्या ही खूबसूरत खूबसूरत सॉन्ग है, दिल चाह रहा है कि दोबारा सुने।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ਦਬੰਗ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪ ਦਬੰਗ 3 ਫਿਲਮ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਜੋ ਬਨ ਨਚਾਲ ਗਾਣਾ ਗਾਏ ਔਰ ਵੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾ ਹੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ
1: ਸਪੌਂਸਰ ਬਾਈ ਕੋਕਾ ਨੂਡਲਸ ਮੋਰ ਫਲੇਵਰਸ ਮੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਮੋਰ ਯਮ ਗ੍ਰੈਬ ਯੋਰ ਕੋਕਾ ਬੋਲ ਟੁਡੇ
2: ਜੀ ਹੈ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Aaj ka 1 gram gold ka rate hai 105.13.
2: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. The Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
3: सुबह का नाश्ता हो दोपहर का लंच या शाम का डिनर सब कुछ एक ही जगह बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी पाए निहारी मगज पराठे और बिरयानी साथ ही लजीज डिजर्ट्स फालूदा शेक्स कड़क चाय कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th आज ही तशरीफ लाइए 881 स्टॉकपोर्ट रोड मैनचेस्टर M19 3PG तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट हर वक्त हर जायके के लिए
4: The wait is finally over.
5: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
4: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
7: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
4: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
6: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा
8: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Southall Travel.
10: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
12: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
14: दिस सैटरडे द 12 मिलियन पाउंड लॉटो जैकपॉट Must be one.
15: Must be one.
16: Must be one.
17: Must be one.
18: Must be one.
14: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
19: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
20: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे जमाना हमारी इज्जत करे और जिसने अपने गुरु की माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से को रोक बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाता है
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Greater Manchester, Bradford, Leeds. We are getting bigger. Leica Radio.
15: the Pakistani hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: सुनते हैं मसूद राणा की आवाज़.

0: So, जी happy happy song सुन रहे थे मसूद राणा की आवाज में.
1: झूम ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा 128.93 इंडियन रुपीस. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप. टीज एंड सीज अप्लाई.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
3: Like a radio.
4: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
9: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
11: वी आर फाइनली गोइंग होम फॉर द वेडिंग.
12: No, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
11: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
12: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destination with 4G and 5G where available.
11: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
12: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
11: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works. At simzy.com. Terms apply. Advertise your service here. 01612508222. Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio launches in Leeds and Bradford soon.

0: Magazine Show with Robina Khan.
1: सर जी मैगजीन शो आप सुन रहे हैं, दो गीत मैंने आपको सुनवाए हैं। पहला गीत कौन सा था? एक तो जल्द जल्दी आवर गुजर गया है, सो बेहाल आपको अच्छा लगा होगा। ये सज्जना जी वारी वारी, जो ऐसे सॉन्ग जिसमें ट्रेडिशनल टच होता है और म्यूजिक भी वैसे ही होता है, वो बड़ा इंजॉयबल होता है, मुझे तो अच्छा लगता है। इसी उम्मीद पर कि आपको भी पसंद आया होगा, हमने इसको प्ले किया। शंकर रेजवानी और सुनिधि चौहान की आवाज में था, हनीमून ट्रेवल, ये एक कोई फिल्म होगी। एनीवेज, प्यार होना ना ना ना था है, पता नहीं ये क्या ना, ये कोई मिसरा गड़बड़ लगा है मुझे। प्यार होना ना था, सीधा सीधा कहते थे प्यार होना नहीं चाहिए था। जुबिन नौटियाल और पायल देव, दो खूबसूरत नाम है, उनकी आवाज में आपने ये गीत सुने। अभी जो हमने आपके लिए प्ले किया, आपके मैसेजेस मिले, मेरा दिल चाह रहा है कि मैसेजेस आज इसी वक्त में शामिल कर लूं, ताकि एक बोझ तो कम हो बासकत होता है कि भूल ना जाए, ये ना हो जाए। सो चलिए 07 03 40 30 20 पर आपके मैसेजेस जो मुझे मिले हैं। सुफियान, आपका शुक्रिया, आपने वेलकम कहा और आपका भी, आपको भी वेलकम कहते हैं। फिजाना नसीब, आपका मैसेज था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु, आपने लिखा है और चाय की प्याली भेजी है, कप में चाय भेजी है, तस्वीरी चाय भेजी है, की करिए ऐसी हूं तस्वीरी चाय को। रुखसाना अफजल फ्रॉम रोस्टेल, आपने हेलो लिखा है और हैव अ गुड डे लिखा है, हैव अ गुड डे टू यू टू। एंड खान, आपका मैसेज है और आपने सलाम लिखा है आपको, हबीबी के नैन निकले फरेबी, अच्छा म्यूजिक आपने लिखा, शुक्रिया। एसपी सजाद, आपका मैसेज है। जमशेद चौधरी, आपने मैसेज लिखा है और आपने जो लिखा है उस पर तो मुझे हंसी आई है, बहुत ज्यादा हंसी आई है, और आपने कोई काफी ज्यादा खिड़कियां खोल दी। आपने लिखा अस्सलाम वालेकुम, आपके मेहमान बहुत जल्दी चले गए, जैसे होता है ना बातें होती है मुंह पर हाथ रखे, हैं जी आपके मेहमान बहुत जल्दी चले गए, आपने उनको चाय नहीं पिलाई। हम लोग जब तक डेरे डाल के ना बैठे हैं कहीं पर, हमें स्वाद ही नहीं आता। और क्या और सुनाओ जी, और सुनाओ, और की हो रहा है, गला भी खराब हो गया इसी पॉइंट पे आके। जब शेर चौधरी को मैंने जरा सा इसको रोस्ट किया तो मेरे गले ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना, आई होप यू डोंट माइंड। तो जब तक डेरे डाल के ना बैठे हैं, अच्छी है, और बताएं कैसा है, मतलब एक ही बात को रिपीट करते हैं भाई, टू द पॉइंट। मैंने एक इंटरव्यू किया जिसमें 10 मिनट फिर भी हमने लिए। सो आपने कहा कि उनको चाय वाय नहीं पिलाई, अब ये बात नहीं है, जरूर चाय वाय चाय पानी तो पिलानी पड़ती है, आपको क्या पता कब से आके बैठे हुए थे। सो एनी वे, तारिक वान आपका मैसेज है, नसीर अहमद भट्टी आपका मैसेज है, और रुखसाना आपने फिर म्यूजिक को पसंद किया तो उस पर आपने म्यूजिकल म्यूजिक बना के भेजा है, एंड इमोजी ऑफ हार्ट।
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
1: वाली स्टाइल हो, कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग हो, अच्छा लगता है ना। सुखविंदर सिंह एंड शारदा पंडित की आवाजें हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है।

0: लता मंगेशकर की आवाज
1: तुझे बिठा के
0: और यही आवाज हमको लेके चलेगी खबर पर नजर की तरफ 9 seconds के बाद 8 5 4 3 2 1
2: खबर पर नजर विथ रुबीना खान।
0: आज की जो खबर है वो बड़ी पथरीली है, बड़ा ये पत्थर वाली है, यानी पत्थरों से मुतालिक है। तो साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने बर्तानिया के इलाके यॉर्कशायर में मौजूद 4000 साल पुराने 3 बहुत दियो हैकल यानी बहुत बड़े पत्थरों के मुहिमे को हल कर लिया है। और इन पत्थरों को शैतानी तीर भी कहा जाता है। वो इतने लंबे हैं, 25 टन उनका वजन है, और कैसे वो खड़े हैं, इरेक्टेड हैं ऑन द ग्राउंड, कुछ समझ नहीं आती। साइंसदान सोचते हैं कि ये कहां से आए, क्या हुए, लेकिन अब जो ओरिजिनेट कहां से करते हैं उसका पता चल गया है। बड़ी तहकीक करते हैं उसके बाद मालूम होता है, एक मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, इसका मकसद ये है। और माहरीन के मुताबिक कबल इस तारीख दौर में इन्हें तामीर करने वालों ने किसी तरह कम से कम 11 मील दूर से मुंतकिल करके ये जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं इनको नस्ब किया था। कई बरसों की तहकीक इस बात की तैयार नहीं कर सकी इससे पहले कि ये इतने बड़े पत्थर आए कहाँ से और इन्होंने ट्रांसपोर्ट कैसे किए इस इतने बड़े ह्यूज चीज को। इंसान के पास क्या ट्रांसपोर्टेशन के मींस थे, क्या था। फिर यही ख्याल आता था कि शायद कोई ऐसा तूफान, कोई ऐसा ग्लेशियर होगा जिन्होंने इस पत्थरों को यहाँ से उठाते पटकते हुए यहाँ लाकर इस मुकाम पर खड़ा कर दिया होगा। लेकिन अब नई तहकीक ने इन पत्थरों का हाली यॉर्कशायर के बर्म रॉक से जो है इनका ताल्लुक या रिलेशन बता दिया है कि ये वहां से लाए गए हैं। और जो महकीन है उन्होंने पत्थरों से हासिल किए हैं, बहुत छोटे छोटे जर्रात होते हैं, इनका मुवाजना यानी कंपैरिजन जो है बिल्कुल करीब के चट्टानों से किया, तो उनको लगा कि इतनी दूर से पत्थर लाने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि इसी तरह के पत्थर यॉर्कशायर के करीब भी मौजूद थे। 11 मील के लिए ट्रांसपोर्टेशन क्यों की ये अभी भी मालूम नहीं है, इसके पीछे क्या कहानी है। सो एनीवे ये एक पत्थरों से मुतालिक थी और इनको शैतानी तीर कहा जाता है। इसी तरह की एक खबर पिछले दिनों भी आई थी कि कनाडा में एक बहुत ही मिस्टीरियस सा आइलैंड मौजूद हुआ है। एक समंदर में चंद हफ्तों के लिए एक आइलैंड नमूदार हुआ और उसके बाद फिर पानी ने उसको गायब कर दिया।
2: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: ऐसा लगता है आज मसूद राणा पे नजर जमी हुई है। हाल दिल आज हम सुनाएंगे, ब्यूटीफुल ट्रैक है।

0: सो जी उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा।
1: जो हम सुनाएंगे।
2: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: आज का गोल्ड रेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 105.13 और ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है।
2: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
3: Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: और जी हाँ बिल्कुल, ये है लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर और आपके लिए मैसेज है, कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 वनडे इंटरनेशनल फ्रॉम संडे 13 सितंबर अंटिल थर्सडे 17 सितंबर फ्रॉम 2:50 PM। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू जियो हॉटस्टार ऐप नाउ एंड जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
2: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
3: Leica Radio.
2: Leica Extra Podcast Update.
0: लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट आपको दे दें। रवि शर्मा ने होस्ट किया है एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉडकास्ट जिसमें टाइटल है मोहम्मद वकील स्पेशल। इसमें ये बातचीत है ना सिर्फ ये कि वो एज अ सिंगर उनकी क्या जर्नी थी और किस तरीके से उनके पास बहुत सी जबरदस्त सी मेमोरीज हैं विद जगजीत सिंह एंड जावेद अख्तर और जर्नी में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लेसन हैं जो उन्होंने वैल्यूएबल लेसन जो उन्होंने लर्न किए। सो ये एक देखने लाइक पॉडकास्ट है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। द मैगज़ीन शो विद रुबीना खान।
3: लाइका रेडियो।
4: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरखास्तों में जान।
5: Big Boss Season 20, every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss House, exclusively on Jio Hotstar.
6: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
5: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danu Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तेज

0: स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए। हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
1: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
2: Must be won.
3: Must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
1: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner

कोई तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होंठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: The Magazine Show with Robina Khan. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: We're finally going home for the wedding.
2: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
1: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
2: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
1: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
2: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
1: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410. साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
8: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
9: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर, जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है, एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए. लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर. ईमेल sales@leicamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 01612508222. दैट इज 01612508222. लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी, आपका स्टेशन.
0: Leica Radio launches in Leeds and Bradford

0: Quote of the Day with Robina Khan.
1: बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने आपके लिए प्ले किया. उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा. और अब वक्त है कोट ऑफ द डे का. और आज की जो कोट है, आज का जो कॉल है, वो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का है. मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और अभी तक सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायर भी हैं. मौलाना रूम 1207 में बलख में पैदा हुए, जो अभी का अफगानिस्तान है. वहां उनकी पैदाइश हुई और फिर कौनिया तुर्की में उनकी वहां डेथ है और वहां पर उनका मकबरा है. आप 13वीं सदी के सबसे बड़े फारसी सूफी शायर, आलम दीन और फलसफी थे. आपकी मशहूर किताबें हैं मसनवी मानवी और दीवाने कबीर. रूमी का पैगाम मोहब्बत, इंसानियत और खुदा से कुर्बत का पैगाम था. आज भी आप दुनिया के बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में से एक शायर हैं. आज का कॉल जो है वो बहुत ही सादा है, इतना सादा है जितनी चीज कोई सादी होती है उतने ही उसमें ज्यादा लेयर्स होती हैं. इस कॉल को जब मैं कल फाइनलाइज कर रही थी कि कौन सा कॉल पढ़ा जाना चाहिए कल के प्रोग्राम में, यानी आज जो इस वक्त मैंने शामिल करने का सोचा, तो पहले ये सोचा कि ये इतना सादा है, इसमें क्या है क्या. लेकिन जितना इसके बारे में सोचा उतना ज्यादा मुझे इसमें तहें, लेयर्स नजर आई, उतना ज्यादा इसमें कॉन्टेंट नजर आया. और ये नेवर एंडिंग किस्म का समंदर टाइप का एक कॉल है. और कॉल ये है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू. जो आप ढूंढ रहे हो वो तुम्हें भी ढूंढ रहा है. इसका मतलब बहुत गहरा है. आप के लिए ये फूड फॉर अ थॉट है कि कभी बैठकर फुर्सत में इसको जरा सोचिएगा कि ये क्या है. किसी चीज को पाने की जब आप में तलब होती है तो वो चीज भी आपको तलाश कर रही होती है. ये इस कॉल में है. हम अक्सर सोचते हैं कि मोहब्बत, सुकून, कामयाबी हमें सब चाहिए, लेकिन ये तलाश एक तरफा नहीं होती. जब आपके दिल में किसी चीज की सच्ची तलब पैदा होती है तो जो कि वो चीज भी आपकी तरफ खींच रही है. ये ऐसा लगता है ये असूल है. अच्छा, ये तो एक बहुत गहरी बात है और समझने की बात है कि क्या ऐसा होता होगा कि हम किसी चीज पर तवज्जो दें और वो चीज भी वापस पलट कर हमारी तरफ तवज्जो दे. ये एक बात है. लेकिन अगर हम इसको बहुत रोजमर्रा के कामों पर फिट करके देखें ना, मैंने इसको बहुत बहुत जगह पर ना अप्लाई करके देखा है तो मुझे लगा है कि ये समझने की चीज है. मिसाल के तौर पर, ये अब थोड़ी मैं आम जिंदगी की बात कर रही हूँ, वो थोड़े फलसफे की बात थी, वो एब्स्ट्रैक्ट बात है कि आप जिसकी तरफ खींचते हैं वो भी आपकी तरफ खींचता है. बहुत प्यारी बात है और बहुत किस्मत की बात है. लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा नजर आती है कि जब आप कोई काम करते हैं, किसी काम को तवज्जो से करते हैं, वो काम ठीक हो जाता है आपका. किसी भी चीज पर तवज्जो दे दें, एक जंगल है उसको आप काट पीट के बिल्कुल ठीक कर सकते हैं. जहां पर आप तवज्जो और अपना रियाज या कुछ लगा देना, वहां से आपको रिजल्ट जरूर मिलता है. और उस वक्त तो जरूर ही मिलता है जब आपका दिल भी साफ हो, दिल भी नेक हो, तब तो जरूर मिलता है. अदरवाइज लोग कहते हैं जी हमने तो उम्रें गुजार दी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं लगा. ऐसा नहीं होता. जब सच्चाई से कोई चीज तलाश की जाती है तो वो जरूर मिलती है. किसी रिश्ते को ठीक करना हो, वो भी अब ये भी देख लीजिएगा. मैं बस इस आखिरी आपके लिए पॉइंट छोड़कर नेक्स्ट आपको सॉन्ग सुनवाऊंगी. वो ये है कि जब फर्ज करें किसी में लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, किसी में भी फ्रिक्शन हो जाती है, तो ये नहीं है कि जो एक पार्टी है वो चाहती है कि ये फ्रिक्शन कायम रहे. हमेशा आप देखें, चाहता दोनों फरीक है कि आप इस लड़ाई को खत्म करें, लेकिन अना होती है, ईगो होती है और बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से आप उसको वहीं रहने देते हैं. इसकी वजह से इतनी कहानियां हैं, मुझे बहुत चीजें याद आ जाती हैं. लिहाजा मैं इसको मुख्तसर करती हूँ, सिर्फ ये कहती हूँ कि हाँ बिल्कुल ठीक है, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको भी ढूंढ रही है. अमजद इस्लाम अमजद की बहुत ही प्यारी एक नज़म है जो उन्होंने हमें खुद भी सुनाई थी. आप ने शायद देखा हो मेरे सोशल मीडिया पर, मैंने उसके डाला भी हुआ है फेसबुक पर या कहीं. सो एनीवे, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है और मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज. और क्या चाहिए.
0: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइकर रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज़.

0: ये भी उसी का एक हिस्सा महसूस होता है। तो शुक्रिया इसको ऐड करने के लिए। और अभी मैसेज किया है, बिल्कुल पूरा अस्सलाम वालेकुम की सारी अल्फाबेट लिखी है, ये बड़ी मेहनत का काम है और मैं इसको जो है एक्नॉलेज कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रुबीना खान, ब्यूटीफुल सॉन्ग चॉइस, ब्यूटीफुल प्रोग्राम, बेस्ट एंटरटेनमेंट। ये मैं पूरा इसलिए पढ़ी हूँ कि ये पढ़ के दिल बाग बाग हुआ। बहुत से मैं मैसेजेस को उस तरह से नहीं पढ़ती क्योंकि ये अपने ही मुँह से तो लिखा हुआ पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब आपने लिखा है चलिए पढ़ देती हूँ। और आप ये हमारे साथ, नाम क्या है आपका? गुलाम अली ईसा, आपका मैसेज है और आपका बहुत शुक्रिया कि आप साथ निभा रहे हैं। जे जमशेद चौधरी, आपको ने थम्स अप दिए हैं। रुखसाना अफजल, आपका शुक्रिया। एंड नसीर अहमद भट्टी, आपको जरूर रफी, मिस्टर रफी साहब के कोई ना कोई गीत जरूर अच्छे लगे होंगे। और एस पी सजाद, आप भी हैं। फरजाना नसीब, आपने तो हमने जिक्र किया कि आपने बड़ी अच्छी सी चाय की कप भेजी। चले आए क्विकली आपको गोल्ड रेट की तरफ लेके चलते हैं, वापिस आते हैं थोड़ी सी देर में।
1: This Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: आज का 24 कैरेट गोल्ड का 1 ग्राम रेट है, 1 ग्राम का रेट है 105.13 पेंस।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. ये है लाइका रेडियो।
0: और जी हाँ, लाइका रेडियो। और आपको बता दें कि बिग बॉस का सीजन 20 इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान, एंड शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस। जियो हॉटस्टार इज नाउ अवेलेबल इज एन ऐप ऑन स्काई टीवी। इसके अलावा भी कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है जो कि जरूरी है, और वो ये है कि संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदासानी लाइव जेज एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स यू टू यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदासानी, सिंगर्स अमान त्रिकी एंड म्योरी ए पटियाला। और इसमें संडे ये हो रहा है 27 सितंबर को एट लेस्टर डी मॉन्टफोर्ट हॉल में। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो। उस्ताद राहत फतेह अली खान TCO presents Ustad Rahat Fateh Ali Khan, a tribute to his uncle Ustad Nusrat Fateh Ali Khan on his 30th anniversary, death anniversary, or one date only, Sunday 18th April 2027 at O2 London, radio partner Leica Radio. Udit Narayan and Aditya Narayan live, 90s ke jo Bollywood legends hain, Udit Narayan wo perform karenge apne bete Aditya Narayan ke saath at OVO Arena Wembley on Sunday 20th December. Tickets available hain from Ticketmaster and AXS. Exclusive radio partner hai Leica Radio Network. Aur phir Lakhvinder Vadali live in concert, Punjabi legend Lakhvinder Vadali Friday 16th October ko at Crystal Grand Slaw mein perform karenge, aur Sunday ko 18th October, डेट नोट कर ले, संडे 18th अक्टूबर एट ICC बर्मिंगम। सो दो डेट्स हैं, 16th अक्टूबर एंड 18th अक्टूबर। सो फ्राइडे क्रिस्टल हॉल में, स्लॉ में, और संडे बर्मिंगम में। ओके, और फिर वन एंड ओनली सुनील ग्रोवर लाइव आप उनको परफॉर्म करता देख सकते हैं। वो होंगे OVO अरीना में परफॉर्म करेंगे वेम्बली ऑन थर्सडे 29th अक्टूबर, एंड लेस्टर में एट मटियाली अरीना ऑन सैटरडे 31st अक्टूबर को। टिकट्स अवेलेबल हैं एट AXS, इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं रेडियो लाइका रेडियो नेटवर्क। एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कविता कृष्णमूर्ति द लेजेंडरी सिंगर विल परफॉर्म एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November, और ये ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज अ दिवाली स्पेशल। Tickets from the venue box office, exclusive radio partner Leica Radio Network. Abji Ragasan, Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at leicaradio.com. So, ye thi aapke liye kuch malumat, balki kuch zyada malumat.
1: The Magazine Show.

0: Magazine Show with Robina Khan.
1: सो जी मैगजीन शो आप सुन रहे हैं और साथ निभा रहे हैं रुबीना खान का, हमारा और आपका साथ सिर्फ 10 मिनट का तकरीबन अभी रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सुनने वालों का जहां तक हमारी आवाज़ पहुंची और आपने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया, तो आपका भी शुक्रिया। और ऐसी कोशिश जो कि मैगजीन शो में डिफरेंट सेगमेंट्स के जरिए होती है, उम्मीद करती हूँ उसके बारे में मुझे ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए या आप क्या चाहते हैं कि मज़ीद क्या प्रोग्राम में शामिल किया जाए। एट द मोमेंट तो ऐसा लगता है कि आपको सारे फीचर्स या म्यूजिक के हवाले से जो भी बात है उसको आप पसंद करते हैं, और मैं ये जानना भी चाहती हूँ कि वाकई ऐसा है, लेकिन बहुत से मैसेजेस हमें बता भी देते हैं, लेकिन अभी और बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि हम प्रोग्राम को और भी ज्यादा बेहतर कर सकें, तो जरूर मुझे बताइएगा। और लाइका की ईमेल एड्रेस आपके पास जरूर होगी, उस पर भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। एनीवेज हमारी अपनी कोशिश जारी है और आप भी अपनी कोशिश और ये अपना हिस्सा जरूर डालें प्रोग्राम्स को मजीद इसको बेहतर बनाने के लिए। सो आज क्या प्रोग्राम हुआ खत्म होता है इस टाइम, और रिज खान आने ही वाले हैं, सो आपसे मेरी मुलाकात मंडे होगी। उस वक्त तक के लिए रुबीना खान को इजाजत दीजिए, अपना और सभी का ख्याल रखिएगा। बाय फॉर नाउ। तुम देना
2: साथ मेरा। दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा, एवरी डे एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार। Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Southall Travel.
4: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
3: Southall Travel can take you there.
2: Southall Travel, at all protected.
5: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner, Leica Radio.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
10: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
11: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
0: Riz Khan, next with Drive.
12: Leica Radio.
0: Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio launches in Leeds and Bradford soon.

0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
2: No, sorry, mate.
3: No, we don't have that part.
4: Have you tried down the road?
5: We can get it in, but it might be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.

0: किसी की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, at all protected.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
5: Borderless World presents Atif Aslam live in concert. Powered by Tap Tap Send.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound
5: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
4: Zenby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Official radio partner, Lyco Radio, Greater Manchester.
6: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner, Lyco Radio.
7: Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
8: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
7: Rich, authentic taste every single time.
8: Royal Chai, brewed for business.
7: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
9: Aap Punjabi aaya!
10: Diljit Dosanjh non-stop on Lyca Radio Punjabi. Listen now on the Lyca Radio mobile app at lycaradio.com and on Alexa.
11: Lyca Radio launches in Leeds and Bradford.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: ग्रेटर मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, लीड्स, वी आर गेटिंग बिगर. लाइका रेडियो.

0: visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio launches in Leeds and

0: ठंडी हवा
1: आहा तुम जा ए काली घड़ा।
2: और बातें तो हम भी चाहते हैं कि आपकी हम सुने, हमारी आप सुने, और उसके साथ साथ ज्यादातर गीत जो हैं वो सुने और सुनवाए जा सके। मैं बताना भूल गई कि एक राजा और भी हैं। ये अलग बात कि वो गलत जवाब भिजवाने वालों के राजा हैं, और वो कोई और नहीं है, वो अपने वही मनु जी। मनु जी जवाब गलत है। मोहम्मद अयूब चौहान जी आपका भी जवाब गलत है। अब ये लड़कियां सारी अड़ गई हैं, पहली बार सुना। हरप्रीत जी ने भी कहा, फिर संध्या जी ने कहा, फिर अमिता जी भी आ गई। अमिता जी आप तो रेगुलर सुनते हो, और संध्या जी आप भी हरप्रीत जी कभी काम की वजह से नहीं सुन पाती हैं, तो ये गीत बूहे बारियां तो अक्सर बेशतर मेरे प्रोग्राम में शामिल रहा है। चलिए हो जाता है कभी मिस हो गया होगा। चलिए अब नहीं कह सकते आप जब मैं दोबारा प्ले करूंगी कि पहली बार सुना है, फिर आप कहेंगे अनीसा जी ये दूसरी बार सुना है। अब गिनना नहीं है, ओके मैं गिन रही हूं। ये नाम फवाद जी, राजा अफ्तियावर हैं, चौधरी फरीद अहमद जी, दीनी जी, उमर जी, ऑल द वे फ्रॉम दुबई। उमर जी ये क्या डीपी लगा रखी है भाई, बहुत प्यारी है। कह रहे हैं दूसरे नंबर से हेलो। अच्छा कितने फोन रखे हुए आपने, आपका जवाब सही है। अमित पटेल जी, ओम प्रकाश लाल जी, हरप्रीत जी वेल डन, शुगुप्ता जी, मंजीत संगर जी, प्रीति जी बेल्जियम से, आबिद जी, सैम शहजाद जी, मकबूल जी, मकबूल हो गए भी आज आप सही जवाब देकर। उल्लास जी टोरंटो से, सलमा जी, आफ्ताब गिल जी हेस से, तोची जी, रीटा जी, मिसेस के किचन में बिजी नहीं है आज क्या, सही जवाब। अजिंक्या जी आई होप कि कल आपने अपनी फरमाइश का गीत सुन लिया होगा, रुत है मिलन की, तो रसीद जरा भिजवा दीजिएगा। ताहिर जी आपका भी जवाब सही है।
3: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
4: This is Laika Radio.
3: Laika Radio. Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: हो भी सकता है उसे दूरी का एहसास ना हो, मैं जिसे पास समझती हूँ मेरे पास ना हो। वो जो बिछड़ा है तो कुछ सोच के बिछड़ा होगा, शायद उसको भी मोहब्बत से कोई आस ना हो। लीजिए भी, हमें तो बड़ी आस है। लो जी, हो गया कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन ये हुआ कि मुझे आप विश्वनाथ के गीत के बारे में कह रहे हैं, हवा से हल्की हूँ आज। कमाल है, इतना कमाल का गाना आपने पहले कभी नहीं सुना, वो भी बहुत बार शामिल हुआ है, लेकिन चलिए ठीक है। आपने भी यही कहा संध्या जी कि मैं हवा से हल्की की बात कर रही हूँ, और हरप्रीत जी भी कह रही हैं कि मैं उस गीत के बारे में कह रही हूँ, बूहे बारियां के लिए नहीं। चले, माफ किया, आप भी क्या याद करेंगी। लीजिए, आपको एक जरूरी पैगाम जो है वो मैं पहुंचा दूं, आपको बता दूं, लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड टीम अप कर रहे हैं एक दफा फिर से। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ इवेंट्स होते रहते हैं, एक स्पेशल प्रमोशनल इवेंट है सिधायू एट क्वालिटी फूड्स हेज एंड हौसलों में। ज्वाइन कीजिएगा रूबी रजा, काजल और सैंडिशा को दिस सैटरडे यानी कि 12 सितंबर, और एंजॉय कीजिएगा फ्री हेयर मसाज सेशन विद सिधायू हेयर ऑयल एंड सिधायू शैम्पू। एक्सप्लोर कीजिए सिधायू टूथपेस्ट एंड एक्सपीरियंस द नेचुरल गुडनेस ऑफ सिधायू आयुर्वेदा। सिधायू फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 years ऑफ ट्रस्टेड आयुर्वेदिक लेगेसी। जाइएगा और खूब मजे कीजिएगा, और फिर जाकर जब आप सैंडियू देखेंगे ना, तो फिर आपको यकीन आ जाएगा कि हम गलत नहीं हंस रहे थे। अगर हम हंस रहे थे कि तो किसी वजह से हंस रहे थे, वो आपको देखने पर ही पता चलेगा। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Laika Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapko dila sakta 374.8 Pakistani rupees, 88.4 Afghan Afghani, 129.2 Indian rupees, 166.8 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
0: Laika Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
0: LIKA Radio.
2: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Laika Radio.
1: The gold is currently trading at £103.76 per gram.
2: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: भाई आपस की बात है, ये वक्त की कमी भी मेरा मुंह बंद करने में नाकाम रहेगी. मैं जल्दी से नाम मेंशन कर दूं, तारिक राहिल जी. दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरी हैं कठिन जिंदगी में, दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरी हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद, और एक आपके जवाब भिजवाने से पहले और एक आपके जवाब भिजवाने के बाद, क्योंकि जवाब गलत है. नीलेश जी, दिलीप सरोज जी, दिनेश पोपट जी, हनीफ जी टोरंटो से, कैसे हैं आप? खैरियत से? जवाब बिल्कुल सही है. इरफान जी, जहीर खान जी, ऑल द वे फ्रॉम कराची, कहते हैं वो जो मैं दिया जलाकर छत पर आपका प्रोग्राम सुनता था ना छुट्टियों के दौरान, बकरे ने टांग मार के, हाथ मार के, उन बकरे के हाथ होते हैं, हाथ मार के वो तोड़ दिया. चलें, सुनना ही होता है, कौन सा आपने देखना होता है, नया दिया ले आए. जवाब सही है. नौशीन खान जी, वीना जी, वेल डन.
2: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर.
1: लीजिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत, गीता दत्त जी की आवाज में, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 1955 की फिल्म. आई होप सैंडी इज नॉट लिसनिंग. उसने कहना वो विंटेज तू ही कर ले, तू ही कर ले, भड़ास निकाल ले वहां.

0: हवा कॉमन रहा आज गीतों में और मिसेस के ना सिर्फ आपका नाम लिया बल्कि ये भी पूछा कि आज किचन में मसरूफियत कम है क्या, तो आपने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, हवा कॉमन रहा गीतों में, बूझने वालों का भी शुक्रिया और ना बूझने वालों का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लीजिए आगे बढ़ेंगे हम एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते और सुनवाते हुए। बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं और अगर किसी का नाम इस घंटे में शामिल ना हुआ हो तो उसके लिए माजरत, प्रोग्राम के अगले घंटे में मेंशन करने की पूरी कोशिश आएगी। बहुत ही प्यारा सा गीत है, सुनते रहिए।
1: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो।
2: लाइक अ रेडियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
1: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
4: No, sorry, mate.
5: No, we don't have that part.
6: Have you tried down the road?
7: We can get it in, but it won't be for a few days.
8: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
9: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danu Properties. Danube 11, 11.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागर्स एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: लंदन, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल Night.
9: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
10: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
9: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
10: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
9: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
10: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
14: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner Leica Radio Greater London.
15: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: तुम बिन जाऊं कहां, कहीं भी मत जाइएगा प्लीज. मेरा हो जा मुझे यार मुकम्मल कर दे, या मुझे छोड़ दे इनकार मुकम्मल कर दे. अपने दीदार के जलवों में घिरा रहने दे, दूर जाना है, दूर जाना है तो दीवार मुकम्मल कर.
0: This is Laika Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: अच्छा जी, आपको बता देते हैं हम हॉलीडेज के बारे में भी. और साउथॉल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स इन दुबई. कांटेक्ट कीजिएगा आज ही साउथॉल ट्रेवल को ऑन 0208574 8410. साउथॉल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Elisa Nasir, live across Greater Manchester with The Big Show.

0: रखना था तेरी मस्त निगाही के भरम को, महफिल में बिन पिए भी मुझे डोलना पड़ा।
1: ये है Like Her Radio
0: और ये है अनीसा नासिर, जो आपको बता रही है कि कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 वनडे इंटरनेशनल्स फ्रॉम संडे 13 सितंबर अंटिल थर्सडे 17 सितंबर फ्रॉम 2:50 PM। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप। Chalo bhai, time.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: महकदे बंद करें लाख जमाने वाले, अब भी हैं शहर में आंखों से पिलाने वाले।
1: Like a extra podcast updates.
0: और आपको पॉडकास्ट के बारे में भी बताने वाले, और इस दफा का लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड वाला जो पॉडकास्ट है उसका टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेट्स, होस्टेड बाय खुश। और खुश स्पीक्स टू मिनाल सांबरे, फाउंडर ऑफ समेरिया ग्लोबल फाइनेंस, टू ब्रेक डाउन मिथ्स अराउंड बिजनेस डेट्स। दे एक्सप्लोर व्हाई बिजनेसेस शुड प्लान फंडिंग बिफोर कैश फ्लो बिकम्स अ प्रॉब्लम, रोल ऑफ AI इन फाइनेंशियल decisions, and why human judgment still remains essential, obviously. तो आपको बता दूं कि तमाम major streaming platforms पर ये platform पर जो जितने भी हैं लाइट, वहां पर आपको लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट देखने को मिल सकता है।
1: लाइका एक्स्ट्रा is here. This is Anisa Nasir with a big show. From South Old Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96, परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे grand.

0: अपने दर्द अपने दुख को खुशी बनाकर गाना, और वो भी ऐसे, ये सिर्फ और सिर्फ रफी जी का ही कमाल है। वो जो लोग थे मेरे हम सफर, मेरी जात का जो निखार थे, वो जो लोग थे मेरे हम सफर, मेरी जात का जो निखार थे, वो जो रोज और शब मेरी चाह थे, वो जो रोज और शब मेरी चाह थे, वो जो लम्हा भर का वक्कार थे, ना वो लोग हैं मेरे पास अब, ना निखार है मेरी जात में, ना वो रोज और शब की चाह है, ना वो लम्हा भर का वक्कार है, बस जिंदगी है बेनाम से, कभी सुबह सी कभी शाम से। अमीन मोहम्मद जी, बेहद शुक्रिया आपके प्यारे से मैसेज के लिए। सुनते रहिए, सुनवाते रहिए, और डेफिनेटली आपकी पसंद को जहन में रखते हुए ही मैं गीतों को जो है वो चुनती हूँ। आपको पसंद आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना जी। थैंक यू वेरी मच। ये गीत आपके भी नाम करते हैं, बल्कि जिस जिस को भी अच्छा लगा उसके नाम, और किसको अच्छा नहीं लगेगा ये गीत, आपका अपना लाइक गो द फर्स्ट रेट्रो यूके लंदन आपके खिदमत में पेश आ गया।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: हिजरत गुरेज अदम तवज्जो थकन सुकूत दूरी और गुरेज मीन अवॉइड करना अदम तवज्जो तवज्जो ना देना थकन सुकूत खामोशी हिजर गुरेज अदम तवज्जो थकन सुकूत गम मेरे एतमाद को कितने कुतर गए दिन को किसी की याद की दीमक ने खा लिया आंखों के ख्वाब शब के सितारे कुतर गए What a beautiful song and you all agreed with me कि yes no doubt बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के नाम करती हूँ मन्ना डे जी का गाया हुआ और अब बहुत सारे जो हैं लोग अभी भी फरमाइशें भिजवा रहे हैं तो आई एम सॉरी रोज में एक दो लोगों की फरमाइशें ही पूरी नहीं कर सकती आप दूसरों को भी मौका देने का सोचा करें ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड और इससे पहले कि हम अगले गीत की जानिब बढ़े हमारी रानू जी का मैसेज आया है डेनवर से कोलोराडो से कैसी हैं रानी जी लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा लगा आज आपका मैसेज देखकर बेहद शुक्रिया और हरप्रीत जी मैं आपका दुख ये तो नहीं कहूंगी कि समझ सकती हूँ लेकिन जान सकती हूँ एक माँ हूं ना आपकी कैफियत का बखूबी अंदाजा कर सकती हूँ अपना ख्याल रखिए राइट एक मैसेज आप सभी के नाम करते हैं बिग बॉस इज बैक 20th सीजन है दोस्तों और इससे हमेशा की तरह सलमान खान होस्ट कर रहे हैं एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर दिखाया जाता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार स्ट्रीम कर रहा है एवरी एपिसोड अलोंग विद लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 के घर से तो जियो हॉटस्टार जो है अब अवेलेबल है एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी तो जरूर कोशिश कीजिएगा देखने की बड़े वैसे मजे की बातें हो रही हैं और टास्क तो जब भी होते हैं तो बस भाई टास्क का दूसरा नाम है लड़ाई झगड़ा फसाद गालम गलोच कल की एपिसोड तो मतलब सुनाई ही नहीं पड़ी क्योंकि ब्लेप ब्लेप ब्लेप इतनी गालियां निकालते हैं यार
1: दिस इज लाइका रेडियो
2: ग्रेटर मैनचेस्टर फील गुड ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप डाउनलोडेड फ्रॉम iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस
1: दिस इज लाइका रेडियो
2: ग्रेटर मैनचेस्टर
1: लाइका रेडियो

0: अब तो शायद मेरे सुनने वालों को भी पता होगा कि इस गीत की फरमाइश निम्मी ने ही की होगी। डेफिनेटली निम्मी, कभी मिलो मुझे, मैंने ना आपको चाय में घोल के ये गीत जो है पिला देना किसी दिन। What a beautiful number. I hope कि आपने इसे enjoy किया होगा। और अभी हमने मुकेश शाह जी के नाम गीत किया और मुकेश जी के नाम गीत किया और एक मुकेश शाह जी और हैं जिनका मैसेज आया कि मेरा नाम भी आया और वैसे ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए दोनों मुकेश, बल्कि हर मुकेश, हर रमेश जी के नाम वो गीत गया। जिसको भी अच्छा लगे भाई उसे अपने ही नाम समझिए। लीजिए जल्दी से ये कुछ काम निपटाए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 374.7 Pakistani rupees, 129.2 Indian rupees, 88.3 Afghani, 166.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: The gold is currently trading at £103.76 per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: और कुलबीर सिंह जी, मुकेश जी का गाया वो गीत आपके भी नाम।
2: ये है
3: LIKA Radio
4: from Lollywood with love with Anisa.

0: वाह अमीन मोहम्मद जी, क्या पसंद है। ये कहते हैं मेरा मोस्ट फेवरेट गीत है। वो कहते हैं वो मुझको छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी, वो मुझे छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी, अब अगर उन्हें खुश भी ना देखें तो मोहब्बत कैसी। इसी चमन में रहो भाई, हम तो इसी चमन में रहेंगे और कल फिर गुल खिलाने के लिए आ जाएंगे। गुल जी आपने बहुत प्यारी शायरी भिजवाई थी, मैंने पूरी कोशिश की सम हाउ शामिल कर पाऊं, वो वैसे ऑलरेडी मैं शामिल कर चुकी हूं, लेकिन इंशाल्लाह जरूर कल कोशिश रहेगी शामिल करने की। मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट का चुना हुआ म्यूजिक सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हाजिर हो जाएंगी काजल जी। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा सारा दिन, जब तक मैं नहीं आ जाती शाम को, मेरा भी साथ निभाने के लिए तैयार रहिएगा। आखिरी दो फरमाइशी गीत तो बहुत बहुत बहुत प्यारे हैं। तारिक राही जी पूछ रहे हैं आपको कैसे पता कि वो वहाँ यूनिवर्सिटी में गाने सुनने जाते होंगे। अरे यादें बनाने तो गए ना, समझा करें तारिक साहब, आप तो खुद उसी सिचुएशन का शिकार हैं। नहीं शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जाऊं रब सोने दे हवाले।
1: This is a Nissan Nasser with the big show. Like a radio. Tum dena saath mera. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. The wait is finally over.
2: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
1: Mirzapur is coming to the big screen.
3: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat.
1: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
4: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
1: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
3: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खोलेगा।
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरी day grand।
6: Weddings, celebrations, corporate events, lagas and sab kuch efficiently।

0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
1: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250

0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place.
4: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
7: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
8: Manchester's biggest love songs continue. The Love Sound. Like her.